0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी,
2: लो लो आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, ये साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे जो आज

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी,
0: आज पियो हंस के दो घूंट सोम रस के, साल भर इसका नशा रहेगा,
1: जो आज मिले मिले, जो आज

है तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में, है तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में।

0: खाना को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।

0: हमारा।
1: अरे भाई, अपना हाल कभी सुधरेगा या पतला ही रहेगा?
0: पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, पोलाद से बना है हर नौजवान।

इरादा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेल।

की जान लोगी क्या इरादा है। हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। हमको तो बर्बाद किया है और किसे